गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी स्थिपरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्त गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला दिउँसोको 1 बज्यो।

लस हे मेबे फेबे मा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहारा दिन प्रे रखोर मा नगा फारम मा असिम टमाटर की ट्रनेल मा सिंगबे सुर सिंजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंके सुर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो होई रोमा हुजुरी मी दिम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तर ला जम्मनु सामान मा होलसेल मूल्यारी यंगबा असेम दिम सम्मन बोरबारी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 010-520-470 असेम 98511-87-882 फोन सेन्जिम सेगो है रोमा।

सजिलो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ्स गुड.

0: पचास पचास नौ सय चौतिस ट्याङ्ला चोक किर्तिपुर काठमाडौँ अन्ठानब्बे पाँच सय बाह्र चालिस नौ सय चौतिस
1: रेडियो बिहानी सन्तानब्बे दशमलव छ मेगाहर्ज।